आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। बाबा दादी संग सदा रहेंगे, याद में बाबा के सदा मगन। ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखो बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है, बिंदी की तो बिंदी की कितनी महिमा है। इसीलिए बाप दादा सदा कहती है कि तीन बिंदु से

0: जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए तीन बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसा। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बन जाएगा ना, अच्छा दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा, तीसरी लगाओ तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है। और श्रेष्ठ आत्मा बनने में
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सदा कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है।

0: kipas bermatam fil bawar bermat mane fil kie bawarski fil bawar to bermatam fil bawar ki aage bawars
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Hey, buddy.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम
3: शिवा जो स्वयं को वा दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, वो स्वार्थ है सेवा नहीं। और नीचे ऊपर होती है निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टर्बन होती। सभी एकदम न्यारी और प्यारी बन कर स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे चारों और अटेंशन प्लीज।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी भी दिल छोटे नहीं करना, बड़ी दिल बड़ा बाबा, छोटा बाबा है क्या, बड़े दिल बड़ा बाबा है ना, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। स्लोगन है बड़ी दिल सच्ची दिल साफ दिल हर मुराद हासिल। जो भी किचरा आवे ना, किचरे की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचरा उड़ के आ जाता है, लेकिन किचरा अपने पास नहीं रखो। जैसे इस दूर कमरे में सोते हो और किचरा हो जाए तो क्या होता है, सफाई नहीं करो, मच्छर होते हैं, बीमारियां होती है। तो ये भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं, तो वो वृद्धि को पाती रहती। बस बाबा, मेरा बाबा, हाजिर बाबा बंधा हुआ है। बच्चा, बाप का बच्चा, भगवान का बच्चा, याद करे मेरा बाबा, और बाबा हाजिर नहीं हो, ये हो नहीं सकता। आपके पास बाप को बांधने की रस्सी है,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है, पता है कौन सी आश है? वो जान तो गई हो, जान गए हो ना टीचर्स, जान गए हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो, बाप दादा पुरुषार्थ देख करके खुश कराते हैं, लेकिन एक आश ये पुरुषार्थ में अभी दीवार गति चाहिए, पुरुषार्थ है लेकिन अभी दीवार गति चाहिए। Thank you. विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त है, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण नहीं आगे। ये कारण है। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सीकन में निवारण सोचो। ये सोचो कि जब विश्व के निवारण करने वाली हो तो क्या स्वयं के छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। क्योंकि मुक्ति दाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, तो मास्टर मुक्ति दाता तो हो ना, लेकिन क्यों दिला रहे हैं इसको समाप्त कर। हर एक समझे मुझे करना है। टीचर समझे मुझे करना।

0: दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे के कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो एक तो के समान संपर्क में सहन भी करना पड़े मुझे समस्या नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, रोब क्यों किया? कहती है, मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं, कराया गया मुझे। अभी बाप क्या कहे? फिर क्या कहती है, अगर आप भी होते ना?

0: ये नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कल्पना अर्थात अपने संपर्क द्वारा संबंध द्वारा चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कल्पना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। एक ही समय तीन सेवा, तो अभी अटेंशन

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन आर्डर करो स्वीट सैलेड। Oh, yeah.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वर्तमान समय

0: ስራ
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अच्छा टीचर साथ उठो, अच्छा टीचर सभी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शांति से

即死。

मनसा सेवा को शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। अभी मनसा सेवा जैसे वाचा सेवा का विस्तार किए, वैसे मनसा

varsa bak ise bak.

Sight seeing.

0: साइटसीइंग देखने के लिए साकी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपने बड़ी दादी को देखना, कितने न्यारी और प्यारी स्टेज है। Yeah.

सारे लाइफ में हद का मेरा पन, हद का मैं पन से न्यारी। रही है उसकी रिजल्ट, बीमारी कितनी भी है एक ही शब्द पक्का है, कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं। क्यों इसके प्रैक्टिकल निशानी देख रहे तो जब ब्रह्मा बाप की तो बात कहते हैं, तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते?

0: Sí, vos más que sé. Otsase. Ortechalo. Papko ap beniste. To ap be. Apaneme. Sada.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स है, लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस समय आप हरि का आत्माओं के प्रति रहम दिल और दातापन कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने के वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने संबंध संपर्क से तो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो, चिल्ला रहे से ऊंचे हो जाओ, हद की बातों में हद के संस्कारों में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Shuffle.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा को पता है, हाथ तो ट्वेल्थ के तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है कौन तैयार है, अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चीकिंग करो। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, नाराज नहीं किया, राशि किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुआ, सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पान मिला वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे, ऐसी सूक्ष्म चेकिंग फिर भी अपने आप को करो, और अगर ऐसी सूक्ष्म चेकिंग में पास हो बहुत अच्छे हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: देखो बाप दादा, मैं चैरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मैं चैरिटी कह रहा है। दूसरी बात क्या देखी, क्यों कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। दूसरा कारण ये दिखा कि अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में दिखा, कोई बहुत रायल रूप का भी अलबेला बन दे। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर अरब को कोई देख नहीं सकते। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते, जो गया हुआ है परमात्मा की हजार आंखें लाखों आंखें है, लाखों कान है, वो अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा साथ साथ देख सकती है, कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है, शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी तो चल लो फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं। देखना आप लोग कहते हो ना, थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रखते।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो। तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्वशक्तियों का वर्षा, इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो आप सबको पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का सलोखन रहा है, याद है? ये धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे। अगर ये समझ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े बोले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा। और जो साथी है वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, पापा की पंडाली अच्छी हो, अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल रखती है थोड़ी। फिर समझती है कि क्या करें, ये मदद करता ना, अभी वो चला गया, मदद कर चिंगिया सूता वह पाप है। तो उस समय कौन दिखाई देते चिंगिया सूया पाप? स्टेज पर आ गई, या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है, तो जिसके कैचिंग पावर और वाणी में किसमें मिटाज होता है और किसमें सब बोलेंगे, एक बात आप भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, लेकिन योग की बात छोड़ो, सिर्फ बोल में भी किसमें मिठास होता है, किसमें स्पष्टता होती है, किसमें कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ की वहाँ की मिसाल वगैरह कैच करके सुनाती है, तो इसीलिए उनका नाम भी हो जाता है, कौन चाहिए फलानी चाहिए, कौन आवे फलानी है, चाहे योग में भले कच्ची भी हो, लेकिन इस पर नंबर फाइनल नहीं होने, जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं दियोंगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने ने स्टूडेंट बनाए, सेंटर बनाए, योग्य कितनों को बनाए, सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन आत्माओं को योग्य कितनों को बनाए, सिर्फ यह नाम हुआ, सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र, लेकिन नंबर इसे नहीं मिले, फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्ति शांति रहे उसी प्रमाण मिलेंगे, इसीलिए ये भी चाहिए चाहिए कदम कर, नहीं तो योग नहीं लगेगा, रोज ही देखते रहेंगे कि फलानी जगह हुआ मेरे को फिर भी नहीं मिला, अभी देखो परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेंगी, तो मुख्य बात है निश्चय को, जो यथारत निश्चय उसको पक्का करो, कहने में शक्तिवान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में टाइम पर आना चाहिए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर कोई दिन अंदर में समझे, हाथ उठाने में शर्म आवे, तो भी अगर कोई विघ्न है या कोई अड़चन है, तो अपने दादियों को या जिसमें भी आपका फेथ हो, बड़े दादी या दादियों में, और सुना देना, रखना नहीं अंदर, कोई ना कोई इलाज ले लेना। क्यों होना है तो अचानक होगा, उस समय पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। अभी चेक करो, कुछ भी अचानक हो जाए, हलचल हो जाए, तो इतनी शक्ति है जो स्वयं को बचाए, वायुमंडल में ये प्रभाव डाले और के भी मदद कर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल

0: अच्छा कहीं नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। ये वर्णन करे कि आज मुझे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Masters.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं, ये नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछ के नहीं आएगा कहाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, समन संपर्क हुआ, बदल गए। अचानक ही हुए ना, सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, सोचा था। अचानक हो गया ना तो परिवर्तन भी अचानक होना। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी, सोचेंगे 2000 तो सोचा था वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेंगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना बाप दादा ने सुना ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या, इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी नहीं बनना किसी भी बात में, चार सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, समय नहीं देंगे, अभी जमा कर लो, जितने चाहिए जैसी चाहिए सबको। खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

ये वाह वाह शब्द भूलना नहीं।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेंटर तो सब सेफ है,
2: सब ठीक है, ब्राह्मण परिवार भी ठीक है।
1: फिर भी बॉम्बे बाप का है, बाप का परिवार है, लेकिन जो बाप ने कहा फुल स्टॉप और तपस्या, इसको जरूर बनाना है। ये तो कुछ भी नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, खिड़की नहीं खोल सकेंगे तो क्या करेंगे।
2: गुलाबा सेंटर में तो बाहर नहीं निकलते हैं अभी, वहाँ हमारी बहनें भी जो है वो बाहर नहीं निकलती हैं।
1: इससे बहुत कुछ होना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: या उनको रही है, लेकिन उनों को भी वाणी और मन से

Jimmy Ward.

0: जीवन।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्राह्मणों का काम के शोक लगाना भी क्या मेहनत है क्या? योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचती है, पाप की महिमा की ऑटोमेटिक मीठे मीठे दिल गीत गाती। ब्राह्मणों का काम ही है, गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल है, नाचना गाना मुश्किल है क्या? है मुश्किल नहीं ना? मुश्किल किसको लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो, गाओ, सहजे ना सहजे कान तो हिलाओ, सहजे मुश्किल तो नहीं है ना? जानबूझ के सहज से हट कर मुश्किल में चले जाते हो। है मुश्किल नहीं? बहुत सहज, क्योंकि बाप जानते हैं आधा कलम मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज कोई है मुश्किल वाला? आप पीछे वाले मुश्किल लगता है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसा कोई एग्जाम्पल निकालो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: शॉट इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है, तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा, चाहे सोन नाम अलग अलग है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और चार चांद लगाओ, ये बाप दादा को अचल, तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, पढ़ेंगे ना, सभी ने उठाया, हम सब एक है, ये तो सेवा के कारण, कोई देख रेख हो सके इसके कारण सोन बने, बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक ही रहेंगे।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी जयते अज्ञानी भी जयते कि अब कुछ होना चाहिए।

हिम्मत रखी। आता ऐसा मिला और यज्ञ रचा, यज्ञ के ब्रह्मा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से न दुख देना न दुख लेना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। अगर आप दिल से ऐसे समय पर भी अगर अधिकार रूप में मेरा बाबा का, तो बाप हसूर हासर हो जाए। क्यों? बाप किस लिए? बच्चों के लिए ही तो है। और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, ये हो ही नहीं सकता, असंभव।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुशी से

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: उत्साह है तब तो हाथ उठ रहे हैं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी बाप दादा ने देखा समय अनुसार जितना सेवा का उपागोत्सा अभी प्रैक्टिकल में है संपन्न बनना।

इस पॉइंट के ऊपर भी अभी स्वयं भी उमाकोत्सा में रहना और वायुमंडल में भी उमाकोत्सा दिलाना एक दो के सहयोगी बन अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की

जैसे एक दो में सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया, ऐसे अभी बाप दादा यही बच्चों में शुभाशय रख

baby. वो शरद है, दीवार पर शरद है।

0: si me quedé o no. Morna to paringa y... Dejen ye morna. Pagwan ki kodi me. China. Ye morna morna ne. Ikis chanam.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: और आप सोचो, संस्कार कौन से है? क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति शांति, ये है ना? तो अब गुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट के संस्कार बनाओ, संस्कार कौन सा है ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पर है माल को अपना बना लिया, पाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल के रखा है और पाप की चीज को गुम कर देते हो क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है, पाप अच्छा लगता है। कहेंगे तो सभी पाप अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय के स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होती है और फिर भी कहता रहता है, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा है। बाप सुन करके खुश भी होते हैं, कितने भोले बच्चे हैं।

बाप कहती है कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है, जब बाप का मेरा बाबा दिल से अगर एक बार भी बोल दिया फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसा भी हो मेरा ही।

0: ये तो अच्छा नहीं है। सब बाप चाहते हैं कि बराती बन के नहीं चलना। सच नहीं बन के चल
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने पहले भी सुना है, अगर दिल में कोई संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज वही चीज हो गई ना। गोली चलाते भी है और रंग लगाते भी है। तो आप सभी सो